आप जप हो अवराह नाम जपाव हो भगत भाई तरिया संसार बिन भगती तन हो सीचार सर्ब कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जप हो गुणतास उपजे प्रेत प्रेम रस चाओ मन तन अंतरे ही सुआओ नेत्र पेख दर्श सुख होए मन बिग साध चरण धोए भगत जना का मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस्त दी जय कर माया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्ब घटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मनहीत हम निर्गुणी आर नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्ब बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भुख बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्ब सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका पे ही फिर जाप अष्टपदी जब कारे हो कशन दृष्टि ताप आप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चेहन न जापत तब हरक सोग कहो किसै व्यापत जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम अपन खेल आप वरतीजा नानक करना हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक हर अगमा पार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप अपनी जोत तरा तब कवन निडर कवन कत डरा अपन चल ताप करना हार नानक ठाकुर अगमा पार अविनाशी सुख अपना सुन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासना जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कह हो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचरा गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कह हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्बान तह कौन कौ मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीसा तह छल छिद्र लगत कहो कीसा जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किस भूकमन तृप्तावै करन करावन करन हार नानक करते का नाहि समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्ब कला पह प्रवीन तह वेद देव कहा को चीन जब अपन आप उतारा तो सगन अप सगन कहा बिचारा जह अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कही अचेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जन हो आप जह शाल छेद भेद समाया ऊहा किसा व्यापत माया पसकवा पह आदेश तिह गुण का नाही प्रवेश जह एक एक एक भगवंता तह कौन चिंत किस लागै चिंता जह अपन आप आपति आरा तह कौन कथा कौन सुनन हारा बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस कवाप है पहुचा जह आप रचियो प्रपंच कार तेह गुण मह किनो विस्थार पापुन तह पई कहावता को नरक को स्वर्ग बंशावताल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार दू सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खेल आप कर देखा खेल संकोचा तो नानक एक
जह अवगत भगत तह आप जह पसरा पासार संत प्रताप दुहु पाख का पह तनी उनकी शोभा उनहु बनी आपह कौतक करा आनंद चोज आपह रस भोगन निर्जोग जैस भावै तिस अपनाय लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसमार अथाह अगंता तोलै जो बुलाव हो त्यों नानक दास बोला श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टा राष्ट्रपदी आप कथा आप सुनने हार आप है एक आप विस्थार जात भावै तास रिष्ट उपाए अपने भाण लय समाए तुम ते भिन्न नहीं कछ होए अपन सूत सब जगत परोए जा कौ प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सबता का हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ हो जिस राख तिस कोई न मारा सो मुआ जिस मन हो बिसारा तिस ताजावर कहा को जाए सब सरेक निरंजन राय जी की जुगत जाकै सुभात अंतर बाहर जन हो साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दास सदा बलिहार पूर्ण पूर रहे दयाल सबु पर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जानै आप अंतर जामी रहो ब्या प्रतपल जीअन बहुपात जो जो रचियो सो तिसै त्यात जैस भावै तिस लय मिलाए भगत करहै हर के गुण गाए मन अंतर बिश्वास कर मान्या करन हर नानक एक जान्या जन लागा हरेक कै नाए तिसकी आस न बिरथि जाए सेव को सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं बीचार जाकै मन बसया निरंकार बंधन तोर पहे निर्वैर आंदन पूजह गुर के पैरे लोक सुखिए परलोक सोहेले नानक हर प्रभा पह मेले साध संग मिलकर हो नंद गुण गाव हो प्रभ परमानंद राम नाम तत् करहो विचार दुर्लभ देह का करहो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह स्वाव आठ पहर प्रभ पेखो हो नेरा मिटा ज्ञान भिनसा अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाव हो मन इच्छे नानक फल पाव हो हालत पालत दोए ले हो सवार राम नाम अंतर और तार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसा तिस साच परीखिया मन तन नाम जप हो लिवलाए दुख दर्द मन ते पौ जाए सच व्यापार करहो व्यापारी दरगह निबह खेप तुमारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर ना वह जाहे तिस्ते दूर कहा को जाए उबर रख नहार ते आए निरभौ जपै सगल भौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जप मन होवत सूख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन कहो कोई न पहुचन हार सर ऊपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसा सो होत निहाल ताक निकट नावत काल अमर पय अमरा पद पाया साध संग नानक हर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुरदिया ज्ञान अंधेर बिनास हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक सकट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे नव निदम रित प्रभ का नाम देहि महिस का विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन न जाई अचरज बेसमाद तिन देख्या जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट ब्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पय आल सर्बलोक पूर्ण

උපයි පුනරත්ස කල් කටල් සීසල් සිරියස්කේත ජගත්කේ ඊසා මොහ පරබ්‍රෂ්ඨ ගගන්තේ පයි සබ්හිනයන් වදයි දෙයි තන තන ලෝගන්කේ රාජා දස්තුන් දාහ ගරිබන වාජා පක්ඛල පවනකේ සර්ජනහාරී දාස් ජාන මොහලේ උබාඩේ කබිය වාච බෙන්ති චෝපයි අමරි කරෝ හදර්චා පූර්ණ හොයේ චිත්ත කී ඉච්ඡා තව චරණන් මන රහය හමාරා අපනා ජාන කරෝ ප්‍රත්පාරා हमरे दुष्ट सबैत मुकाबहो आप हाथ दाय मोहि बचाबहो सुखी बसाई मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिया सब बैरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्ह छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो भर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाद मुझे अबरिया मरण काल का त्रासन वरिया है ऊ जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तो जजो करे हो रच्छा राख ले हो मोह राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हमता तुम हो पुरी चातर दस घंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पाल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सापर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जबद कर करा करता रा प्रजा धर तब देह पारा जब या कर करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बूझो चारे

करके रहे। हो जो जाकि एक बारू चौपाई को कह चौपाई संबत 17,000 जाए अर्ध 17,000 तीन कह जाए भाद्रव सुदी अष्टमी रव तीरुस्तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र प्रख्याने त्रियं त्रित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समाप्त मस्त सुमस्ताप जून दोहरा दास जान कर दास पर कीजा कृपा अपार आप हाथ दा रख मोहे मन क्रम बचन बचार चौपाई मैं नागरेसा प्रथम नाऊ केशन बेशन कबहु न त्याऊ कान सुन पहचान न तिन सौ लिव लागी मोरी पाग इन सौ

0: दिन साढ़े कोल बाणी है सानू अगवाई दे रही साढ़े इष्ट देव ने संपूर्ण हन। धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जिन्हों का 422वां पहला प्रकाश दिहाड़ा जापा मना रहे। सो महाराज सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश की कई 3 साल का समा लिखा है। बहुते गुरसिखा ने साल तो वध समा लगा इन्ना लिखे ये थान ते फिर हरिमंदर साहब जी विखे 15 दिन बाणी नू जिल्द बन्नण ते सोहना रूप देण ते ते हरिमंदर साहब विच तैयारी करन वास्ते पीड़ा साहब सिंघासन सतगुरां दा जो मर्यादा सारी कैम आप कीती सतगुरां ने जो आपां छोटे रूप विच इत्थे वेख रहे हैं ये सारी मर्यादा किवें प्रकाश करने ने चंदोआ साहब सच्चे पातशाह जी ने यह सारी तैयारी करवाई। जिल्द बनन का कार्य पूरा होया फिर भादरों सुधी एकम का दिन अज वाला दिन सच्चे पातशाह जी ने चुनिया संगतां नूं सद्दे भेजे ते फिर महाराज सच्चे पातशाह बाबा बुढ़ा साहब जी नूं यह सेवा दित्ती प्रगाश दी सतगुरां दी सारी सेवा जिहड़ी सी। सो उन्होंने प्रकाश किए सन पहले दिन आप सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने चौर साहब की सेवा ली श्री रामसर साहब जी वाले स्थान तो हरिमंदर साहब आउंदिया भी बाद विच भी सन्मुख बैठ के भी सच्चे पातशाह जी ने संगत माणी सी साढ़े वास्ते पूरने पाए सन एडे महान होंदे हुए बाणी दे रचेता होंदे हुए भी सच्चे पातशाह जी जिवें प्रेम विच भिज के ये शंत पहली पौड़ी चारण की बख्शिश कर रहे ने। तुखारी शंत महला पंजवा पंचम पातशाह जी तुखारी राग विच शंत ये शंत बाणी दा भाव जिवें छंद रचदे ने कवि आदक सोहणी कविता बना के ते कव ते संगीत जी दे विच होवे कविता भी होवे ते संगीत भी पैदा होवे जिन्हों गाउंदिया रस आवे वो छंत बाणी है। सो छंत तो भाव जस वाली बाणी अकाल पुरख दे सनमुख पंचम पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक अदुती ब्रह्म है जो एक है केवल ओंकार ये धुनी तो सारे पसारे इस पहले बोल राही वो प्रकाशन वाला है। सतगुर प्रसाद सतगुरां दी प्रसाद नाम कृपा दा बख्शिश द्वारा उहदा ज्ञान हुंदा हिरदे विच्चों ही उहदी प्राप्ति हुंदी ज्ञान हुंदा है। सच्चे पातशाह जिवें बख्शिश कर रहे ने पावन विचार शब्द दी सरवण करना करिए जी।
1: तुखारी छंत कोल कमाई लालना गुर मन दीना।
0: सो महाराज सच्चे पातशाह जी धन गुरु अर्जन देव साहब जी कह रहे ने कि कोल कमाई लालना वो लालना जेड़ा प्यारा है लालना तो भाव हुंदा लाल प्यारा लाल जिवें माइयां बीबियां बच्चे नूं प्यार करदियां ने ना पुत्र दी ममता आउंदी है छोटे बच्चे नूं कहिंदी आ मेरा लाल। रब दे जिहड़े भगत ने उहनां नूं रब इन्ना प्यारा हुंदा वो उहनूं भी प्यारा लाल प्यारे शब्द नाल संबोधन करदे ने। घोल कमाई लालना वो लालना प्यारे तो असीं घोल कमाई हुंदे हां सच्चे पातशाह तेरे तो घोल कमाई जाने हैं घोल कमाई तो भाव वारने जाना अपना आप तन मन धन सौंप देना लोट पोट हो जाना प्रेम वाली वस्त एक रस जिथे टुट प्रेम बज जाता हिरदे विच गुर मन दीना यह तां जा हुंदा है घोल कमाई तां हुंदा है जदों गुरु साहिब सच्चे पातशाह नूं मन दे दे गुरु नूं विचोले नूं मन अर्पण कर दे फिर सतगुरु मन रूपी वस्त्र नूं नाम दा रंग प्रेम दा चाढ़ देंदे ने। जिन्हां गुरसिखां हिरदा दिता गुरु नूं मन दिता अपने मन दी मत छड़ के गुरु दी मत नूं ऐड कर लिया उन्हां नूं महाराज जी ने फिर जिवें ललारी दे कोल कोई कपड़ा छड़ आउंदा ना भई आ रंग पहला ला दे ते दूजा चाढ़ दे वो फिर चाढ़ देंदा इवें सतगुरु सच्चे पातशाह नूं इह उदों घोल कमाई होए आ प्यारे तो जदों गुर मन दीना जदों गुरु नूं अपना मन दिता है वेचिया है सच्चे पातशाह जी।

तिने अंतर हूँ मैं कंडा हे। ज्यो ज्यो चलहा चुभै दुख पावहै, जमकाल सहहै सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेसर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्बी महला पंजवा, करो बेनंती सुनहो मेरे मीता। संत टहल की बेला, ईहा खाट चलहो हर लाहा, गै बसन सोहेला। औद कटा दिन सरायनारे, मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार बेकार संसे मह, त्रयो ब्रह्म ज्ञानी। जिस है जगाए पिया वै हो रस, अकथ कथा तिन जानी। जा कौ आए सोई ब्याज हो, हर गुर ते मन है बसेरा। निज घर महल पाव हो सुख सहजे, बहर न होए गो फेरा। अंतर जामी परख बिदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे, मोका उकार संतन की धूरे। अंतर जामी पुरख बिदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे, मोका उकार।

संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी ते कहते पवित्र सतगुरु।

निर्वैर अकाल मूर्त जूनी स भंगुर प्रसाद अस महला पहला वार श्लोक नाल श्लोक पिमाले पहले के लिखी टुंडे असराज की धुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरे अपने देवहड़ी सदवार

तीर्थ नामे अर्चा पूजा गुरवास बहकार जोगी सरन ध्यान जित अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया कायाकार सत्य मन संतोख उपजे देने के विचार दीदी मंगे स सगुण सुख करे संसार चोरा जारा ते कुड़ारा कारा बविकार एक हुंदा खाए चले

नानक तन तो पाए कै संभाले सबना, जिन करता करना किया चिंता पी करनी ता, सो करता चिंता करे जिन पाया जग, तिस जुआरी स्वस्थ तिस दिवान भग।

पूरक पंडित हिकमत हुज्जत संजय करें प्यार, धर्मी धर्म करेगा वा मैं।

0: बलहारी कुदरत वसे तेरा अंत न जाई लखे राव जात में जोत जोत में जाता कल कला प्रभु रया तू सच्चा साहिब सिप सवाले जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जोक्ष करना सो कर रहे महला दूजा
1: जोक शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दन सूर शब्दन शूद्र शब्दन प्राकृत सर्व

गए मुसकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तू।

मन को मन सुख मन बोध मन सर कौन की शुद्ध मन मोह चोटा न खाए मन जमके साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मोर ठगन पाए मन पथ प्रगट जाए मन मगन चले पंथ मन धर्म बंद ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन पावे मुख द्वार मन परवार साधा हार मन तरह तारे गुरसिख मन नानक पवे ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नहीं समार कौल धर्म दायक भूत संतोख था प्रख्या जन सूत जे को बुझे होवे सच्यार तबले उपर किता पहार तरती होर परे होर तिस्ते पार तले कमन जोर जी अजात रंगा के नाव सबना लिखा बड़ी कलाम है ओ लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखा किता होए किता तन सवाले ओ रूपा केती दात जन कौन कूत किता पसाओ एको कुवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कौन कहा विचार वारा न जावा एक बार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप संख भाओ असंख पूजा संख तप पाओ असंख अंत मुख वेद पाठ संख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरमो भगत सार असंख मोह ने बुलाए तार कुदरत कौन कहा विचार वार न जावा एक बार जोत भाव है साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े आर कूड़े फिरा असंख मलेश मल पक खाहे असंख निंदक सिर करे भार नानक रीज कह विचार वरन जावे गुवार जो तुद भावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख खाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखर सिर संजोग बखाण जिन्हें लिखे तिसर नाहे जे फरमाए तेत पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावे नाही को ठाओ कुदरत कवन कहा विचार वार न जावे एक बार जो तुद भावे साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सुखे मूत लिची कपड़ होए दे साबुन लई धोए भरिए मत पापा कै संग धोपै नावे कै रंग पुनी पापी आखन नाहे कर करना लिख लै जाहो आपे भी जा पे खाओ नानक हुक्मे आवहो जाहो तिर तप दै दुखतान जे को पावे तिलका मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ सरगुण तेरे मैं नाहे कोय विणगुण कीते भगत न होए स्वस्थ बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन चित कवन वार कवन से रुती माओ कवन जितो आकार वेल न पाई पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो का दिया ज लिखण लेख पुराण हितवार न जोगी जान रतमा होना कोई जा करता सिठी को साजे आपे जाना सोई केव कर आखा के सलाही क्यों मरने के जान नानक आखन सबको आका एक दू एक सियाणा वड्डा साहे वड्डी नाही कीता जा कहो है नानक जे को आपो जाने अग गहना सोहै पाताला पाताल रख अगासा अगास ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहने को बात दस अठारह कनक ते बस लिख भात लिखा वे तलिखिया लिखा विनाश नानक वड्डा आखिया आप जाने आप सालाही सालाहे तिसत ना पाईया नदियां तैवा पवै समुद्र न जानिया समुद सा सुल्तान गिरा चेती माल धन कीड़ी तल न होमनी जे तत मन हो न विसर अंत न सिद्ध करना अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुनण न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किसी बिरलाहे

0: आत्मा दा आनंद जेड़ा जीवां दे अंदर पैदा हुंदा है।
1: साध संगत संग बनी,
0: जिथे साध संगत रब दे प्यारिआं नाल रल के ये संगत कठी हो जावे उथे ये आनंद बनदा है।
1: जिन उद्यम किया ताल केरा,
0: जैसा काल पुरख वाहिगुरु आप जी ने ये सरोवर लगन विच अमृत हरिमंदर साहब नूं बन विच सरोवर नूं आके पदरियां कीता, ओह थां ते ये उद्यम कीता है ताल नूं लगन वेले ये सच्चे पातशाह सेवा कीती आप।
1: इसकी उपमा क्या गणी,
0: आप जी दी उपमा वडियाई की गिणती विच है, केड़ी असीं गिणती विच करिए, बेअंत वडियाई है आप जी दी। और दूजा भाव यह है, जिन उद्यम किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गणी। जदों आप जी सरोवर पक्का करवा रहे सन, इटां दी बहुत सोहणियां पक्कियां इटां दी लोड़ सी, महाराज विच कच्चियां पिल्लियां इटां आउंदियां सी विंगियां, रड़ियां हुईयां ज्यादे विंगियां जीआं। ओ आप गुरु अर्जन देव साहब अपनी निगाह विच बैठ के पासे कढवाउंदे सी वी माड़ी इट नहीं कोई गुरसिखो लगनी चाहिए, कारीगरां नूं सुचेत करदे सी। जदों वेख्या भाई बैलो ने, भाई फफड़े के मालवे दे भाई बैलो जी सन, उन्हां वेख्या भी बहुत सारियां इट्टां तां खराब ही निकल रही ने, अजकल वांग प्रबंध नहीं सी ना सोहना। सो उस वेले उन्हें पुछया वे आवे आले नूं जाके भी सारियां इट्टां सोहणियां लाल सुरख होण, गुरु साहिब जी दी इच्छा अनुसार वह खुश हो जाण, यह मैनू कोई उपा दसो। उन्हें आवे आले ने कहा, हाँ गुरसिखा है, जे इन्हां विच गंद शहर दा मैला पाया जावे ना आवे दे विच इट्टां दे पकण तों पहलां, बालन दे विच गंद पाया जावे तां बहुत लाल इटां होणगीआं। उन्हें तरतीब दे भाई बैलो ने आप फौड़े लै लै के जिन्ना गंद सी जो भी शहर दा सी आप उन्हां नूं नाल ला के ते चकना शुरू कीता आवे विच पाया, अपने लीड़ियां दी परवाह नहीं कीती सी ओह गुरसिख ने। ते जदों आवा कढ़िया लाल सुरख इटां सारियां, गुरु अर्जन देव साहिब महाराज वेख के बहुत खुश होए, कहन लगे इन्नियां सोहणियां इटां आउण लग गईआं गुरसिखो ये की कर। उन्हें कहा भाई बैलो ने, महाराज जाके वेखो इहदी हालत किदां लिबड़िया, पैरां तों लैके सिर तक नाल आप लाया होया उन्हां नूं, शहर दे जिहड़े सुगंध चुकण वाले सी उन्हां नूं मजदूरी दे रहे। ते महाराज सच्चे पातशाह इन्ने खुश होए, कहन लगे सदौणे, इशनान करवा के केसां समेत उहदा सद्या। ते महाराज जी ने गलवकड़ी विच विच लै के कहा सी, भाई बैलो सब तों पहलो तेरी महान सेवा तो सब तो पहलो हो गया। ये उन्हां गुरसिखां दी वडियाई भी है, गुरु प्यारियो सेवा वालियां नूं सन्मान दिता, जिन उद्यम किया ताल केरा तिस की उपमा क्या गणी। ओ गुरसिख दी की वडियाई करिए, ओ ते सब तो पहला फास्ट हो गया वाह।
1: 68 तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा।
0: सच्चे पातशाह जी कहिंदे ये जिहड़ा सरोवर लग रहा ना, इहदी एडी वड्डी 68 तीर्थां ते नहाउण दी पुन किरिया, उत्थे जाके पुन आदक करन दी जिन्नी किरिया दा फल है वह सारा इत्थे मिलेगा। 68 तीर्थां ने यह बेनती की, सानू महाराज थां दिओ, विसाखी ते दिवाली नूं आके आप विच इशनान करदे ने 68 तीर्थ, अपनी मैल ला के जांदे, फिर पवित्र होके जांदे ने इत्थों। ये शक्ति है गुरु प्यारिओ, उदों 68 तीर्थां दा इशनान हो जांदा जिहड़ियां संगतां करदियां ने सरोवर विच। 68 तीर्थ पुन किरिया महा निर्मल चारा, महा ये सरोवर जिहड़ा है कला जल दा सरोवर नहीं है, तीर्थ ये नाम दा है ना, जल दे नाल नाम आ, नाम दियां तरंगां वाहिगुरु दी औसत वडियाई दियां हर वक्त जल नूं छूंदियां ने। ते इन्हां अमेरिका वालियां ने प्रयोग कीता सी 2007 विच, मेरे कोल खबर भी आओ, कुछ चीज़ां इन्हां समान रखिया सी ते जल रखिया सी भांडे विच, आवाज़ लाई सी, शब्द धुन लाई सी, सब तो वध असर पानी दे उत्ते पिया सी जल दे, 40% उत्थे लिखिया होया 100 च सब तो वध। वेखो महाराज सच्चे पातशाह, ये तां करके एवें नहीं समझना चाहिए भी उत्थे नहाउण दा की फायदा जी, उत्थे की लोड़ है जी, ये नाम दा तीर्थ है, जल पाप नाशक है, शक्ति नाम दी जल विच। और गुरु प्यारियो फिर गुरु दा ये भी सिद्धांत है कि कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन पैरो। हुण दूरों जाना वा, थकिया टुटिया शरीर जाके उवें बह के हरिमंदर साहब, पहलां तां सुणदा ही नहीं कोई कीर्तन, ਸੋ ਜੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ? ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਉਹ ਠੰਡੇ ਜਲ ਨੇ ਲਾਹ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਚੁੱਭਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਗੁਨਾਹ ਮਿਟਣੇ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਤਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੇਰੇ ਸੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਭਾਵੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਲਵੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨਿਰਮਲ ਚਾਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੁੰਨ ਲੱਗੇਗਾ।
1: ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਬਿਰਧ ਸਵਾਮੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਅਧਾਰਾ।
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਰਧ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪਤਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪਤਿਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਾਵਨ ਹੋਣਗੇ।
1: ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤਾ,
0: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ।
1: ਉਸਤਤ ਕੌਣ ਕਰੀ ਜੈ
0: ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ

समय तो बाद सुनाया होया सच किसे का थां नहीं आउंदा। जदों समा आवे सुनाया होया सच उस वेले काम करदा। सच सुनाए सी सच की बेला। धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी।

नानका से तन होवे छार। ज्ञान गली ढूंढिए कथना करना सार, कर मिले ता पाइए और हिकमत हुक्म खुआर पौड़ी नदर कर।

0: सच बुधाया
1: थोड़ी ना करे जे अपनी का नगरी सतगुरु पाया एहो जीओ मुके जिन भ्रमिया का सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जे वरदा ता को नहीं सब सुने लोग सब आया सतगुरु ने सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सच सच बजाया जिन सच सच बजाया।